बैठा कहूं सिमट भव शंकर का ठाव सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सुजियम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुर्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तोज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुक्त है मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

दुख दर्द भाव निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत 1750 जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रबारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित उपख्याने तिरिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समापत, मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा। दास जान कर दास पार कीजा कृपा अपार, आप हाथ दै राख मोहे मन क्रम बचन विचार। चाओ पई मैं नागरिसै प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कबू न त्याऊ, कान सुने पहचान न तिन सौ, लिव लागी मोरी पग इन सौ।

हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बिदनाना। कृष्ण जत्था मत चरित्रो चारो चूक होए कबले हो सुधारो कबियो बाचो दोहरा। जो निज प्रभु सो कहा सो कहु जग माहे जो ते प्रभु को त्याय है अंसरो को जाहि दोहरा। हर हर जन दोई एक है बेबचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग जो जल ही विकास माय दोहरा।

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज चेती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना

निरप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भव भंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वा कृत है, करता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजन प्रयात छंद है। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुत जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्र नादन बे भूते, कलंकर रूपे अलंकर अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी कामे, एक अक्षरी छंद, अजाय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज पंज लख पख, अकाल दयाल अलेख भेख नाम अकाम गाह टाह नाथे परमाथे अजोनी मोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्म अभरम अगंजे अलेखे, भुजह प्रयात छंद, नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे, अगंजल नामे समस्तल निवासे, नकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासे, सुतर्मंग बेपूते, सदा सचदानंद तृंग प्रणासे, करिमुर्ख निंदा समस्तल निवासी, अजायब भूते गजायब गनीमे, हरियंग करियंग करिमुर रहीमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, सुजयम प्रभु शुभम सर्वदा सुजूते,

कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव संसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगे कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान।

घड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंत चंद सूरज अवतार सगले धरती माल धन वर्तन सृजन जा

तीर्थ नाम हेर चाव पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते हम जे त्यालक नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपज

तन से तल थया एक बूंद गुरु अमृत दीनो तुआ टाला अमर नाम हुआ। भगत भंडार गुरु नानक को सो पे फिर लेखा मूल ना लिया सोठ महला पंजवा। चरण कमल सिंह जाका मन लीना से जन तृप्त आगाई। गुण अमोल जस हृदय न बसया ते नार तृष्ण त्रिकाई। हरे राधे रोग अनंदाई जिसम विस्तर मेरा राम सुने तिस लाख।

निको ठाकुर दे सराओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दियो मेरवाना तुम करो भला हम भलो ना जाने।

तुहरा रहो कीते को मेरा सम्मान करण वार्तन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रपाने खिन मैं अवर खिन मैं अवर आचार्य चलत तुम्हारे रूड़ो गुड़ो गैर गंभीरो उचो अगुं अपारे साथ संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पया पेकती नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना हम संतन से बन जाई पूर्व लिखिया पाई मन तेरा पाई रहो संतन स्यों मेरे लेवा देवी संतन स्यों व्यवहारा संतन स्यों अमला काटिया हर पग परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तौ उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहा करै गोय जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पै सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते विस्मा दे सोरठ महला पंजवां जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छड़ जानी

मृतक को पायो तन सासा विसरतिया मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पे श्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई ताकि कीमत कह न जाय राव दुख सो काट आयो डेरा आनंद मंगल सुख विश्रामा मन पंचत फल मिले चिंता पूर्ण होए कामा इहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो भय हृदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पाने।

रतन छाड़ कौड़ी संग लागे जाते कछु न पाइए, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ध्याई है। सिमरो हर हर नाम प्राणी बिनसा काची दे अज्ञानी राव। मृग तृष्णा हर सुपन मनोरथता की कछ ना बढ़ाई, राम भजन बिन कामना आप सत्संग न काहू जाई। आहुआ करत बिहाय अवरदा जी को कामना कीना, तावत तावत न तृप्तास्य राम नाम नहीं चीना। साध विकार भी कह रसमातो असंकते कर फेरे, नानक की प्रपाए बनंती काटो अवगुण मेरे। सोट महला पंजवा, गुण गाव पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिकजारे, महाभिखमागन को सागुर साधु संग उदारे। पूरा गुर मिट परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा राव। हर हर नाम निधान रस पिया मंथन रया गाई, जात कत पुर रहो परमेश्वर कत आवै कत जाई। जप तप संयम ज्ञान तत बेता जिस मन वसा गोपाला, नाम रतन जन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला। काल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की पासा, कौ नानक प्रभु कृपा तारी।

जाकी सरन पाया सुख पाया बाढ़ दुख न हो राव बड़ भागी सत्संग प्राप्त तिन भेट दुरमत खोई तिनके धूर नानक दास बांछै।

आए आए अपना प्रभु ते आए संत सरोवर न आवे सो जन परम गत पावे मरण आवे जाई हर हर नाम ते आए ए ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान है बाबा नानक प्रभ शरण आई सब चिंता गंत मिटाई सोठ मल्ला पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही है उरी गुरचरण लाए निस्तारे हर हर नाम सुमारे अपनी दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राके मात पिता जो पाला राव बड़ भागी सतगुर पाया तिन जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवै सिवड़ भागा हर अमृत बाणी गावै सदा की धूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हर रख ली हर दर्शन प्राणा धार आए पूर्ण बिमल विचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सन स्वामी सोठ महला पंजवा गुरपुरा चरनी लाया हर संग सहाई पाया जा जाइए तां सवेले कर कृपा प्रभ मेले हर गुण गावो सदा सुपाई मन चिंदे सगले पल पावो जी कै संग साई राव नारायण प्राण अंधा राम संत नारे नारा पत तपनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला साधे जी संग रखवाला हर दिन रहन कीर्तन गाइया बोर न जोनी पाई है जस देवा पुरख विधाता हर रस दिनी जाता जम कंकर नेर न आया सुख नानक सरनी पाया सोठ महला पंजवा गुरपुरै कीती पूरी प्रभ रब रहया भरपूरी खेम कुशल पै स्नाना पार ब्रह्म बिटो कुरबाना गुर के चरण कमल धारे बिगड़ ना लागे तिलका कोई कार सर्व सवारे राव मिल साधु दुरमत कोई पथत पनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कुमाते गुण गोविंद गाइया सत्संग मिल त्याई मान बाशत पल पाए गुरपुर।

राग सोटमल अपंजमा दै दिस छत्र मेघ कटा कट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन फिर परदेस सिधायो हुण नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करते लाल तब चतर पात्रो आयो राओ क्यों विसराए लाल पे आरो सर्व गुना सुखदायो मंदर चर क्या पंत निहारो नैनीर परे आयो हाउ हाउ पीत पायो है बेचो सुनत देस निकटायो पां पीरी के पात पर दो भिन पे के दूर आयो पयो कृपा।

छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लगई भाई, हरे आप वसा मन आए, फिर का हुक्म न जानई भाई, सा कुलखणी कुनार मन हठकार कमावनी भाई, विण नावै कूड़ियार, से गावह जिन मस्तक भाग है भाई, भाई सच्चा बैराग आन दिन राते गुण रव है भाई, निरभौ गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा भाई, सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मन हो विसारी है भाई, जिस दी वड्डी है दात, मनमुख मैली डुमणी भाई, दरगह नाही थाओ, गुरमुख होवै ता गुण रवै भाई, मिल प्रीतम साच समाओ, एत जन्म हरना चेत्यो भाई, क्या मोह देसी जाए, किड़ी पवंदी मोहाए ओन भाई, बिख्या नो लोभाए, नाम समल है सुख वस है भाई, सुख सदा सुख शांत शरीर, नानक नाम समाल तू भाई, अपरंपर गुणी गहीर, सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब जग जिन है उपाया भाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया भाई, दे कर अपनी बथ, किन कहिया क्यों देखिए भाई, करता एक कथ, गुर गोविंद सलाही है भाई, जिस ते जापा तथ, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ, जा का घर सब किछ है भाई, नवनिद भरे भंडार, तिसकी सेवा ना पवै भाई, ऊंचा गम अपार, जी अजंत प्रतपालदा भाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिए भाई, शब्द मिलावनहार, सच्चे चरण सरेवी है भाई, भ्रम भौ होवै नास, मिल संत सभा मन मांझी है भाई, हर कै नाम निवास, मिटा अंधेरा ज्ञानता भाई, कमल होवै प्रगास, गुरबचनी सुख उपजै भाई, सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़ी है भाई, होई है सब की धूर, घट घट ब्रह्म पसारिया भाई, पेखा सुना हजूर, जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई, तित दिन मरिया चूर, करन करावन समरथो भाई, सर्ब कला भरपूर, प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, तिस भावै ता मेल ले भाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगासी है भाई, हृदय होवै प्रगास, प्रगट भया प्रताप प्रभ भाई, मौलिया धरता आकाश, गुरपूरा संतोखिया भाई, अहन सलागा पाहो, रसना राम रवै सदा भाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीव्या भाई, निश्चल पाया थाओ, जिस प्रतीत ना वही भाई, सो जीअड़ा जल जाओ, बहुगुण मेरे साहिब भाई, हो तिसकै बल जाओ, ओह निर्गुणी आरे पालदा भाई, दे निथावे थाओ, रिजिक संबाहे सास सास भाई, गूढ़ा जा का नाओ, जिस गुर साचा भेटी है भाई, पूरा तिस करमाओ, तिस बिन घड़ी न जीवी है भाई, सर्ब कला भरपूर, सास ग्रास न विसरा भाई, पेखो सदा हजूर, साधु संग मिलाया भाई, सर्ब रहा भरपूर, जिना प्रीत ना लगी है भाई, से नित नित मरदे झूर, अंचल लाए त्राया भाई, भौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया भाई, की तोन अंग पार, मन तन शीतल होया भाई, भोजन नाम आधार, नानक तिस शरणागति भाई, जे किल बिख काटन हार, सोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तह अपना नाम जपाया, बाहर काढ़ बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया, जिस नौ कीतो कर्म आप प्यारे, तिस पूरा गुरु मिलाया, सो आराधे सास सास प्यारे, राम नाम लिवलाया,
मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक, तुद बिने वरना करन हार प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म भ्रम आया प्यारे, अनक जोन दुख पाए, साचा साहिब विसरिया प्यारे, बहुती मिलै सजाए, जिन भेटै पूरा सतगुरु प्यारे, से लागे साचा नाए, तिना पिछै छुट्टिया प्यारे, जो साची शरण आए, मिठा करकै खाया प्यारे, तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए पतिष्ठिया प्यारे, तिस्ते उपजिया सोग, भोग पहुंचाए भुलाए अन प्यारे, उतरा नहीं विजोग, जो गुरमेल सवारिया जो गुरमेल उधारिया प्यारे, तिन तुरे पया संजोग, माया लाल चटिया प्यारे, चितना वह मूल, जिन तू विसरा है पार ब्रह्म स्वामी, से तन होए धूड़, बिललाट करह बहु तेरिया प्यारे, उतरा नाही सूल, जो गुरमेल सवारिया प्यारे, तिनका रहया मूल, साकत संग ना कीजई प्यारे, जे का पार वसाए, गुरमिलिया हर विसरा प्यारे, सो मोहे काला उठ जाए, मन मुख ढोई नह मिलै प्यारे, दरगह मिलै सजाए, जो गुरमेल सवारिया प्यारे, तिना पूरी पाए, संजम सहस सियाणपा प्यारे, एक न चली नाल, जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे, तिन कुल लागै गाल, होदी वस्त न जातिया प्यारे, कूड़ न चली नाल, सतगुर जिना मिलायोन प्यारे, साचा नाम समाल, सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे, जिस नौ नदर करे, अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे, अमृत पूर भरे, दुख सागर तिन लंघिया प्यारे, भव जल पार परे, जिस भावै तिस मेल लह प्यारे, सेई सदा खरे, समरथ पुरख दयाल देव प्यारे, भगता तिस का ताण, तिस सरनाई टह पे प्यारे, जे अंतर जामी जान, हालत पलत सवारिया प्यारे, मस्तक सच निशान, सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे, नानक सद कुरबान, सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, पाठ पढ़ियो अर वेद बिचार्यो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना स्यो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म नेका, हार पर्यो स्वामी का द्वारा, दीजै बुद्ध विवेका रहाओ, मोन पयो कर पाती रहो, नगन फिरयो बन माही, ताट तीर्थ सब धरती भ्रमयो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल न उतराए, हि बेदा जे लख जतन कराए, कनिक कामनी है वर गैवर, बहु बिद दान दातारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, नह मिलिया हर द्वारा, पूजा अर्चा बंधन डंडौत, खाट कर्मा रत रहता, हो करत बंधन मह परया, नह मिलिया एह जुगता, योग सैदा सुन चौरासी, ए पी कर कर रहेया, वड्डी आर जा फिर जन्मै, हर स्यो संग न गहेया, राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म फारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेवक एह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता, रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਰਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਦੰਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਕਤ ਮਨ, ਜੀਬੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ,
ससुरा पेईऐ भै वसी सतगुर सेव निसंग पर हर कपड़ जे पिर मिलै खुशी रावै पिर संग सदा सिगारी नाउ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर कैसा जे पिर भाव नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जाहर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरपुरख मनावै अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सुरात हर रति हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दरेड़ाया मनानत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप भोगन हारिया सब तेरा शब्द वरता ओ पावन हारिया हो गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया श्लोक महला तीजा हउमै जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरा सतगुर राख लिए अपना पन्ना पाए हो जग जल ता नदरी आया गुर कै शब्द सुभाए शब्द रते से शीतल भए नानक सच कमाए महला तीजा सफलियो सतगुर सेविया धन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीव दया मोया न विसरा सही पुरख सुजान कुल उधारे अपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीव दे प्रवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए नाखी है जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हो गोला लाला तुद मैं हुक्म फुरमाई है हो गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਜੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸਵ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਐ ਨਾ ਵਿਸਰਿਆ ਗੁਣਤਾ ਸਵ ਮਤ ਜਾਣ ਹੋ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਮੋਇਆ ਸਵ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਪਾ ਸਵ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਬਹੁ ਅਤ ਘਣਾ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਨਾ ਸਾਥ

रंग तिरंगने एक नाच अपन करतबा जी अंदर जियो सब किसी जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर नंद बधाई तुझ कर माण महता ते जा अपना आप जर।

हर अंतर जामी सब बिद जाने, उस अगे झूठ बोली जांदा। ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का, भगवान कहन लगे मर सुदामिया मन ना मन, भई कुछ ता खारे आखिया इतवार नहीं आया। कहन लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है, तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना।

0: साज बिना कह हो वह सूचा
1: नाम बिना धन अंध
0: मुख आवत ताके दरगंध
1: इन से मन धन रहन बेदा बिहाई
0: मेघ बिना जो खेती जाए
1: सब काम
0: यो कृपण के नार्थ धाम
1: धन धन ते जन जय कट बस्यो हर नाव
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: जय देवर का जेवर कमावत
0: मन नहीं करी।

0: अमृत जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सब सह जय रसना
0: जय प्रसाद हाथ कर चल है
1: जय प्रसाद सुनूर ले
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सब सह समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग वर कत लाग
1: गुरु प्रसाद।

0: जगदगति
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लीप
0: जय जन्म कमल
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुख
0: सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी गदृढ़ समान
0: जैसे राज।

0: का स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
2: जैसे मैला गेला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश
2: जैसे तारु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान
2: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं मान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
2: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भई
2: नानक जन भवाग रे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीता
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुराना पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत भरी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
2: ब्रह्म ज्ञानी की

0: ब्रह्म ज्ञानी जत करे प्रभावे
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वरा
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के

0: नाम सत सत प्यार हर
1: सत सत सब धारी
0: आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभकता
0: सुरत सत सत जसंता
1: नर को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप रे दे जन मानिया
0: करम कराम तिन मूल पहचानिया
1: जग रे दे विश्वास प्रभ आया
0: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: करते नरपो होए बसाना
0: जिस दे उपजा तिस माए समाना
1: बहुत माइले बहुत गडाई
0: आपको पिन ना कहना जाए
1: जे बुझण हार विवेक
0: नारायण मेरे नानक एक
1: सेव के आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी।

0: भले।
1: जाच के जान जाते प्रभदान
0: कर कृपा देहो हर नाम
1: साधना के मांगो दूरे
0: हार ब्रह्मे श्रद्धा पूर
1: प्रभु के गुण गाव
0: सा साल प्रभु तुम्हें प्यावो
1: प्राण का मुझे लागे प्रीत
0: भगत करो प्रभु की नित नीत
1: एक उड़े को आधार
0: नानक मांग

0: अंतर प्रकाश नील लाग
1: की जब अब्रस हुए
0: नानक नाम रते सुख हुए
1: की मनसा पूरी पई
0: सदगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभु हुए दयाल
0: सेवक की न सदा निहाल
1: लॉर्ड मुक्त जन भया
0: जन्म मरण दुख प्राम गया
1: सदगुने सब दासा पूरे
0: प्राव रे आसत संग हजूरी
1: सदा दलिया मलाए
0: नानक भक्ति नाम समाए
1: सुख बिसर जे कह न पाने
0: सुख बिसर जे किया जाने
1: सुख बिसर जन सब कह दिया
0: सुख बिसर जे जीवन जिया
1: सुख बिसर जे अगन राखे
0: प्रसाद को बिरला लाखे
1: सुख बिसर जे बैक ते काड
0: जन्म जन्म का टूटा गाडे
1: पूरे दा देह बजाया
0: प्रभु नानक जल त्याया
1: सदन संत करो यो काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पाओ
0: आप जपो वरे नाम जपावो
1: पद पाए दरिये संसार
0: बिन भक्ति तन होसी चार
1: सब ज्ञान सुख नित नाम
0: पूरा जात पाए विश्राम
1: सब दुख को होत नाश
0: नानक नाम जपो गुंतास

0: तब कहते होता
1: कर्मधारी अपन सुन समाधि
0: वैर विरोध के संग मात
1: पवन चीन न जापदे
0: अभरक सुख को किसे व्यापत
1: अपने आप पार ब्रह्म
0: तब मोहा किस होवत परम।

0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
1: पानी बसंत माहे
0: चार कुंड दिशे समाये,
1: नहीं गोटाओ
0: गुरु प्रसाद अनक सुख पाओ।
1: मत में देखा
0: सूर्य नक्षत्र में
1: सबको बोले
0: आप डोलना कबूल।